ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

महादेव, ओम जय जय जय महादेव, उमापति महादेव की जय, सदाशिव भगवान की जय। वी लिसन टू अ फुल भजन एट दिस टाइम एज अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट।